0: City FM 89.
1: It's 7:30 a.m.
2: City FM 89. We're playing the song.
3: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
3: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
4: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
0: डोंट एडजस्ट योर डायल.
5: दिस इज
1: City FM 89.
0: यू आर लिसनिंग टू
5: नॉनस्टॉप हिट्स.
6: No talk.
1: Just you
6: and the music.
1: Back to back
6: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
3: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
2: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
3: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
2: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
3: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
2: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया, सब क्यों देख रहे थे?
3: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
4: Emergency कभी बता कर नहीं आती.
5: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
6: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
4: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
7: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
8: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
1: यू आर लिसनिंग टू
9: नॉन स्टॉप हिट्स.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: You got me going crazy.
4: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
5: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
6: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
6: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
5: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
6: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
5: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
3: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
2: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
3: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
2: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
3: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
2: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
3: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
4: City FM 89.
1: You're listening to
5: Non-Stop Hits.
1: City FM 89.
6: We're playing your song.

0: City FM 89.
1: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
3: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-सीटर चाहिए थी.
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए पैलेसेड स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
4: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits
5: 89.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
1: City FM 89.
3: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
4: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
5: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती.
6: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
7: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे.
5: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
8: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
9: No talk.
10: Just you
9: and the music.
10: Back to back
9: starts now.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
3: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
5: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
6: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. Grand, bold and hard to miss.
5: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है.
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
6: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
5: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
6: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
7: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: सिटी FM 89।
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
1: CityFM 89
5: योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन।
1: यू आर लिसनिंग टू
0: नॉन स्टॉप हिट्स।

जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज वी फाइव शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और एसएमएस की शेयरिंग अपनी पसंद की वी फाइव ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G।

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: City FM 89
3: on the dial.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89.
7: You're listening to
8: Nonstop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers, it's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
4: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
5: City FM 89.
6: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
7: दिस इज
4: सिटी FM 89। We're playing your song.
8: Yeah. Hold on, special delivery coming through.
9: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
10: We're now live on WhatsApp.
11: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
10: It's as easy as 03142-898989.
9: Save our number now and WhatsApp us.
12: City FM 89. We're playing your song.
13: You're listening to
14: Nonstop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m. City FM 89.
4: You got me going crazy.
5: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
6: खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
7: Hold on, special delivery coming through.
8: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
9: We're now live on WhatsApp.
10: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
9: It's as easy as 03142-898989.
8: Save our number now and WhatsApp us.
11: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
12: Beach Camp.